0: प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है, बड़ी आस्था के साथ सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहु क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहन और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम मोनोपोलीज के एकाधिकार के खिलाफ हैं। हम किसी किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी भी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए वो देश के लिए अच्छा नहीं, हमेशा ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कुछ कुछ हासिल हो जाए तो वो गलत है, हम तो ये कभी नहीं मानते। इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो। चंदा चोरी अयोध्या के लिए, अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माझ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है, पद्धति में कि माझ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, तो छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत है? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: Welcome back. Let's turn to our Get Real India story. Three newborns are dead after a devastating fire tore through an ICU of Maharashtra's Amravati District Women's Hospital. 36 babies were rescued, but questions over hospital safety are now mounting, especially in smaller towns. Families are demanding answer. The Maharashtra government has ordered a probe. Take a look at tonight's Get Real India story.

0: Three tiny lives gone in a fire inside the very place meant to keep them alive. In Maharashtra, at around 3:30 Monday morning, flames erupted inside the neonatal intensive care unit of Amravati's District Women's Hospital after a ventilator reportedly exploded. 39 newborns were inside. Doctors, nurses, and staff scrambled to disconnect equipment and carry the babies to safety. 36 were rescued, but 3 could not be saved. 6 critically affected newborns were shifted to a nearby super specialty hospital for treatment.
1: यहीं पर जो है रात लगभग 3:30 बजे तड़के 3:30 बजे जो है एक वेंटिलेटर में स्पोर्ट हुआ है, ऐसी जानकारी प्राथमिक सामने आ रही है। इसमें लगभग 35 से अधिक बच्चे यहां पर जो है इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन इस पूरी घटना में जो है जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया है वो अब तक जो है 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक जो बच्चा है वो अधिक झुलसा है।
0: फॉर देयर फैमिलीज दिस इज नॉट जस्ट अ फायर, इट इज अ लाइफ टाइम ऑफ ग्रीफ एंड अ डिमांड फॉर आंसर्स।
2: जब फायर ब्रिगेड आया तो 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा, उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या हुआ, होता क्या नहीं इसके बारे में। एक हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे।
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अ हाई लेवल प्रोब एंड अनाउंस्ड 5 लाख रुपीज एड फॉर विक्टिम्स किन।
3: हम लोगों का प्रयास यही रहा कि जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने प्रयत्न की शिकस्त की, फिर भी 3 बच्चों को हम लोग बचा नहीं पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हमारे लिए भी है। बाकी 6 बच्चे जो है उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में दाखिल किया है, वो सुरक्षित है, अच्छी तरह से उनको हम लोगों की निगरानी में हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित उन पर उपचार हो रहा है।
0: द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग अ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज।
4: इतना गरीब वेरी अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे 3 बच्चों का गरीब बच्चों का वहाँ पे मृत्यु हुआ। उसके साथ 2021 में जब एसआई भंडारा में एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें 10 बच्चों का मृत्यु हुआ था, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी वहाँ पे की गई थी, उसका रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार ने उसके बारे में कोई भी एक्ट नहीं किया। हमारा कहना है कि इसमें प्रॉपर ऑडिट होने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होना भी इम्पोर्टेंट है।
0: But here is the question that cannot be ignored. How many more hospital fires before safety stops being an afterthought? Because Amravati is not an isolated tragedy. In June, 4 patients died in an ICU fire at Muzaffarpur's Prasad Hospital. And in October last year, 8 patients died in a fire at the ICU of Jaipur's SMS Hospital Trauma Center. Hospitals are supposed to be sanctuaries of care, not places where patients fight for their lives against the very systems meant to protect them. With Dhananjay Sable in Amravati, Bureau Report, India Today.
5: Let's take a break at this point, but as we end tonight, I want to leave you with my image of the day, where a few hours of rain yet again brought Delhi NCR and particularly Gurugram to a standstill, with several parts of the region waterlogged, vehicles left stranded. The millennium city Gurugram, with the highest per capita income citizens per square kilometer, finds that its infrastructure keeps crumbling. Flooded roads, waterlogging, traffic chaos. Well, who's going to speak up on these real issues? That's the big question. One of the biggest challenges for India in the future is the quality of our urban infrastructure. Think about it. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.

घड़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अरबन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं?

0: आशा है आपकी फ्लाइट सुखद रही होगी।
1: को पावर्ड बाय एयर इंडिया, न्यू फील्स गुड। LIC हर पल आपके साथ।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: संजय निषाद जी, मछली खा रहे हैं आजकल आप?
2: अरे हम निषाद हैं, मछली नहीं खाएंगे कौन खाएगा। हम मत्स्य मंत्रालय, हमारे लोग मछली पर ही निर्भर हैं। मछली नहीं हो तो जिंदा कैसे रहेंगे? अंग्रेजों मुगलों से लड़े, अंग्रेज उजड़े हैं, कुछ है ही नहीं जमीन जायदाद, मछली खा के जिंदा रहते हैं। ये पिछले बेईमान लोग हैं, सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम देते थे। आज तो योगी जी कम से कम, मोदी जी कम से कम उनको अनाज दे रहे हैं। जिंदा तो मछली नहीं खाएंगे, निषादों का परंपरा है। उसके लिए दिक्कत है कि जो जाके मंदिर में राम राम भी करे, इधर से आके मछली का भी भोजन करे। तो हमको लगता है हमारे लोग तो परंपरागत राम के भक्त भी हैं, राम के आत्मबाल सखा भी हैं, और मछली भी खाते हैं।
1: मछली वेज है या नॉन वेज है?
2: अरे यार मछली है, कब कब मनोज तिवारी से पूछना चाहिए, उन्होंने कहा था कि बिना लहसुन प्याज के मछली नॉन वेज है, तो मैं भी उसको कह दिया, उसमें क्या कहते हैं। वैसे मछली सुबह उत्तर प्रदेश का प्रियम्बुल है, मछली तीर धनुष जल राजा नल निशान।
1: वेज है कि नॉन वेज?
2: नहीं, हम कहते हैं अभी तो जो WHO की लिस्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वेज की, नॉन वेज की लिस्ट से मछली को निकाल दिया और अंडे को भी निकाल दिया। तो अगर निकाल दिया है तो उसको क्या माना जाएगा।

घड़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अरबन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं?

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: उन बुजदिलों का काम है, क्योंकि उनको पता है अब वक्त बदल गया, वो डरने वाली की कोई बात ही नहीं। अगर वो आए, वो सामने आए, सिक्योरिटी फोर्स को छोड़ा वो पंटू के सामने भी आए कि हम रुक रुक हजूम में यहाँ पे आ रहे हैं, वो सामने नहीं है पीछे से दम क्या देते हैं। अगर उनमें दम है, अगर वो शेर है, अब वो सामने सामने करेंगे। हम अब डरने वाले नहीं है, वो जमाना गया है, वो चूहू की तरह छुपे है बिलू में। अगर उनमें दम है वो बाहर निकले, दिखाए अपना ताकत।
1: सेफ्टी तो आज दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इस सेफ्टी के साथ संघर्ष करना है। कश्मीरी पंडित संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ यहाँ रहेगा, उसको रहने की यहाँ सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करेगी तो वो यहाँ रहेंगे। और ये जो टारगेटिंग किलिंग है, ये टारगेटिंग किलिंग उसके बाद भी बंद नहीं होगी, ये टारगेटिंग किलिंग ये चलती रहेगी। लेकिन जब भाईचारा बना रहेगा तो उस भाईचारे में ये कोई बहुत मायने नहीं रखेगा।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ये उन बुजदिलों का काम है, क्योंकि उनको पता है अब वक्त बदल गया, वो डरने वाली की कोई बात ही नहीं। अगर वो आए, वो सामने आए, सिक्योरिटी फोर्स को छोड़ा, वो पंटू के सामने भी आए कि हम रुक रुक हजूम में यहाँ पे आ रहे हैं। वो सामने नहीं है, पीछे से धमकियां देते हैं। अगर उनमें दम है, अगर वो शेर है, अब वो सामने करेंगे। हम अब डरने वाले नहीं है, वो जमाना गया है। वो चूह की तरह छुपे है बिलू में, अगर उनमें दम है वो बाहर निकले, दिखाए अपना ताकत।
1: सेफ्टी तो आज दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इस सेफ्टी के साथ संघर्ष करना है। कश्मीरी पंडित संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ यहाँ रहेगा, उसको रहने की यहाँ सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करेगी, तो वो यहाँ रहेंगे। और ये जो टारगेटिंग किलिंग है, ये टारगेटिंग किलिंग उसके बाद भी बंद नहीं होगी, ये टारगेटिंग किलिंग ये चलती रहेगी। लेकिन जब भाईचारा बना रहेगा तो उस भाईचारे में ये कोई बहुत मायने नहीं रखेगा।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: संजय निषाद जी, मछली खा रहे हैं आजकल आप?
1: अरे हम निषाद हैं, मछली नहीं खाएंगे कौन खाएगा। हम मत्स्य मंत्रालय, हमारे लोग मछली पर ही निर्भर हैं। मछली नहीं हो तो जिंदा कैसे रहेंगे? अंग्रेजों मुगलों से लड़े, अंग्रेज उजड़े हैं, कुछ है ही नहीं जमीन जायदाद, मछली खा के जिंदा रहते हैं। ये पिछले बेईमान लोग हैं, सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम देते थे। आज तो योगी जी कम से कम, मोदी जी कम से कम उनको अनाज दे रहे हैं। जिंदा तो मछली नहीं खाएंगे, निषादों का परंपरा है। उसके लिए दिक्कत है कि जो जाके मंदिर में राम राम भी करे, इधर से आके मछली का भी भोजन करे। तो हमको लगता है हमारे लोग तो परंपरागत राम के भक्त भी हैं, राम के आत्मबाल सखा भी हैं, और मछली भी खाते हैं।
0: मछली वेज है या नॉन वेज है?
1: यार मछली अब कब कब मनोज तिवारी से पूछना चाहिए, उन्होंने कहा था कि बिना लहसुन प्याज के मछली नॉनवेज है, तो मैं भी उसको कह दिया उसमें क्या कहता है। वैसे मछली सुबह उत्तर प्रदेश का प्रियाम्बुल है, मछली तीर धनुष जल राजा नल निशा।
0: वेज है कि नॉनवेज?
1: ना हम कहते हैं अभी तो जो WHO की लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वेज की नॉन वेज की लिस्ट से मछली को निकाल दिया और अंडे को भी निकाल दिया। तो अगर निकाल दिया तो उसको क्या माना जाएगा।

0: 7,30,000 plus H-1B visa holders, 5,50,000 plus dependents who live in the US, and tech giants like Infosys, TCS, Wipro are certainly leading in the H-1B use. What next? This will also lead to an increase in the cost of hiring Indian engineers in the US that will impact US companies and, of course, those who are applying for those jobs. Moving on, the Allahabad High Court has dismissed a petition filed by a Muslim student seeking permission to wear a hijab with her prescribed school uniform, observing that wearing a headscarf cannot be established as an essential religious practice of Islam. A division bench of Justice J.J. Munir and Justice Indrajit Shukla asserted that wearing the hijab cannot be considered an essential religious practice protected under Article 25 of the Constitution. The court noted that no sufficient religious or legal grounds have been placed before it to establish that wearing hijab was an obligatory practice in Islam, without which a person's faith would be affected. The High Court also upheld the importance of a uniform dress code in educational institutions. That's the latest that has been declared by the court. As far as wearing the hijab as part of the uniform is concerned, where the court has made it amply clear. In fact, a division bench of Justice J.J. Munir and Justice Indrajit Shukla, who asserted that wearing the hijab cannot be considered an essential religious practice protected under Article 25 of the Constitution. The court has also noted that no sufficient religious or legal grounds had been placed before it to establish that wearing the hijab was an obligatory practice in Islam, without which a person's faith would be affected. The High Court has also upheld the importance of a uniform dress code in educational institutions. We're trying to get further details on how this is now being implemented, but one thing that is very, very clear, the Allahabad High Court has dismissed that petition that was filed by a Muslim student. She had sought permission to wear a hijab with her prescribed school uniform, observing that wearing a headscarf cannot be established as an essential religious practice of Islam, which means that all those Muslim students who wish to wear the hijab along with the uniform is something that has been dismissed by the court. Let me take this to my colleague Simar Chawla, joining us live on the broadcast. Simar, do give us details of what the Allahabad High Court has said on this matter.
1: Well, that's a big development that has taken place in Allahabad High Court, in which they have clearly stated, by rejecting a plea in which a student asked for a permission to wear hijab in the school. The court, in fact, rejected the plea, saying that hijab is not a compulsory practice in Islam. Moreover, the court went on to say that the school uniform is there to promote uniformity and, in fact, to promote the professionalism and these kind of statements were made. Now, the statement and the decision was given, in fact, considering the judgments which have been made in the past. For example, Kerala High Court, Bombay High Court and Karnataka High Court, they have made a reference in this very particular matter, in which they have said that although wearing dresses, these are the issues.
0: Sir, I'm sorry, I'm having to interrupt you here, but we cut across to these live protests that are underway in Patna, massive protests that are being reported on the ground in Patna, where water cannons are now being used on the protesters. There you take a look at those pictures of how these protests are escalating, so much so that the authorities have now resorted to using water cannons, protesting BPSC students who marched to Chief Minister's house. And the picture is certainly suggesting that some of them are also being detained at the moment. Let's listen in.
2: जो है वो हिलने को यहाँ से तैयार नहीं है और जबरदस्त हंगामा इस वक्त पटना में जो है वो देखने को मिल रहा है राजीव.
0: My colleague there getting us details from the ground of what exactly is happening. There you see heavy police deployment as the protests are escalating, so much so that the police has now resorted to using water cannons to disperse those crowds. These are BPSC aspirants who are on the ground, where they were out there to stage a protest and also march to the Chief Minister's house. The police stopped them on the way, and there you see some of them were also being detained.
3: सभी इसी तरह जो 15 मांगे हम लोगों का,
2: आज आप लोग की बीपीएससी रद्द करने की मांग थी लेकिन वो तो हुआ नहीं है, क्या करोगे?
3: होगा, जरूर होगा। हमारे साथ जो हमारे साथी अनशन पे बैठे हैं 15 रोज से 10 रोज से, वो इसी तरह जारी रहेगा। ये तो हम लोग का टेलर अभी पूरा पिक्चर बाकी, अगर हम लोग का जो है मांग नहीं पूरा माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे पूरा बिहार में, और पूरा बिहार का चक्का जाम करने का काम
2: करेंगे।
3: इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे।
4: हम लोग बात नहीं मानेगी, हम लोग को मुकदमा कर दे, जेल कर दे, लाठी कर दे, गोली चला दे, लेकिन हम लोग अपने बात मनवा के रहेंगे अंतिम सांस तक, एक एक कतरा, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे इस निकम्मी सरकार के खिलाफ।
5: देखिए, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण कर रहे थे, इस तरह से लाठीचार्ज छात्रों पे किया गया। हम लोग परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं, तमाम जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आंदोलन उतरे हैं। तो छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग छात्र जो छात्र एकता हम लोग रहेंगे, और छात्रों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।
2: चलिए, यहाँ पटना आईजी जितेंद्र राणा भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, यहाँ पे लाठीचार्ज करने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को यहाँ पर घेरने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। डाक बंगला चौराहा रण क्षेत्र में इस वक्त देखिए तब्दील हो चुका है, और जगह जगह से जो छात्र छुप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इनको भी जो है वो पकड़ा गया है, इस महिला है, इनको भी पकड़ के जो है वो पुलिस बस में जो है वो ले जाया जा रहा है। जबरदस्त अराजकता इस वक्त राजधानी पटना में सड़कों पर नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से एक एक करके कई छात्रों को जो है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको यहाँ बसों में डाला जा रहा है, और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करके देख लिया गया, दो दो वाटर कैनन चलाए गए, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। छात्र जो है वो डटे हुए हैं, भीगने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के लोग भी उनको रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई टस से मस होने के लिए वो तैयार नहीं है। और फिलहाल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको यहाँ फिलहाल पुलिस बस में जो है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ देखिए एक और किस तरीके से देखिए पकड़ पकड़ के जो है यहाँ इन छात्रों को बस में डाला जा रहा है। और पटना आईजी जितेंद्र राणा भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, यानी कि पुलिस के आला अधिकारियों को भी जो है वो यहाँ आना पड़ गया है हालात को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो अराजक यहाँ बनी हुई है डाक बंगला चौराहे पर। और आज पुलिस प्रशासन ने जो है इधर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इस बार पुलिस प्रशासन ने एक नए तरीके से पटना मेट्रो में इस्तेमाल होने वाले जो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैरिकेटिंग्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया था। इस तरफ देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये पटना मेट्रो के जो है ये बैरिकेटिंग जो है आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इसको भी कहीं कहीं कहीं तोड़ दिया गया है, और छात्रों ने आगे बढ़े हैं। और क्योंकि हालात इस पटना के डीएम भी आप यहां देखिए, और एसपी एसएसपी देख सकते हैं, पटना के डीएम एसएसपी दोनों यहां पर अब मौके पर यहां पहुंचे हुए हैं हालात को नियंत्रित करने के लिए। कार्तिक जी, क्या हालात है एसएसपी साहब?
6: बाद में करते हैं, अभी सब कंट्रोल में है, बाद में करते हैं।
7: सुनिए सुनिए,
2: तो देखिए
7: सुनिए, अब प्रदर्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आपके जो भी प्रतिनिधि मंडल है, आपकी जो मांगे हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल को आगे करिए, हमारे वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आपकी जो भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के अपना प्रतिनिधि मंडल आप आगे भेजिए, और आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीछे हट जाइए, और जो आपके प्रतिनिधि मंडल हैं उनको आगे भेजिए, आगे हमारे वरीय पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं, आपकी जो मांगे होंगी आपके प्रतिनिधि मंडल हमारे वरीय पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। आप ध्यान से सुनिए, आप प्रदर्शनकारी जो भी हैं पीछे हो जाएं, और आप अपने प्रतिनिधि मंडल को हमारे पास भेजिए, यहाँ पर वरीय पदाधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जो मांगे हैं आपके प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को रखेंगे, आप लोग पीछे हो
2: देख सकते हैं, यहाँ पर बार बार प्रशासन और पुलिस जो है वो
0: And there you see how the scenes are unfolding on the ground. High drama that is being witnessed in Patna. This is primarily over BPSC aspirants who are there with slogans, holding placards, and they were staging a march towards the chief minister's house where the security had to stop them on the way. Crowds, some of them who are also being detained. See how those protesters are also crossing through the barricades that led to further escalation and security that was heightened on the ground. Not just police officials, but also security forces who have now been deployed. There you see the van that is moving out on the left of your screens where some of those aspirants have been detained. But the protesters who are very clear, they're not going to pull back in any manner. Many of those protesters have formed a human chain in a bid to cross through those barricades, exerting pressure. There you see how the policemen are trying to take control, where they also tried to erect the barricades again but could not happen, is when they resorted to using water cannons to disperse these protesters. But the situation still remaining tensed on the ground, where the protesters are determined they will not back down. These are BPSC aspirants who were protesting against the government, and they were also staging a gherao of the chief minister's house for the very same. They were staging that march. With that, it is time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Its nutrient value is much more, but that wasn't the case, is what wasn't the case, is what FSSAI sources are indicating.
1: All right, Sneha, many thanks for getting us those details. Sneha, they're telling us how Mondelez has been called out by FSSAI. This is regarding Bournvita and the misleading claims that the company was quoting as part of their advertisement, which has now been withdrawn. Moving on, just a day after Gurugram's Paul outlet faced flak over worm in sandwich, another such incident has surfaced in Maharashtra. A Pune resident who's claimed that a maggot was found in a food item purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar. The aggrieved Pune resident took to social media to raise concerns over the quality and hygiene of food products sold by the bakery. The incident has raised questions over the hygiene standards and quality control measures followed by the bakery. Incident at Paul's Pune outlet has come amid Maharashtra FDA leading an aggressive crackdown on food safety violations across the state. Well, that is the concern behind Maharashtra's widening food safety crackdown. In just 6 days, the Maharashtra FDA has taken a series of tough actions against food outlets across Mumbai. Five eateries were shut down on August 19. A day later, the sale of loose edible oil was banned. And now, on August 24, licenses of 9 outlets have been suspended after inspections flagged serious food safety and hygiene violations. 5 of those outlets are MCA establishments. FDA inspections found poor food storage practices and lapses in staff hygiene, raising questions over the basic standards being followed in kitchens serving the public. And this crackdown is not limited to restaurants and eateries. The FDA has also turned its focus to food outlets around schools, where children are among the most vulnerable consumers. Maharashtra FDA food safety crackdown, where what happened in Mumbai Cricket Association outlets, 5 MCA outlets faced FDA action. There was no valid license that was found at the clubway, hygiene and temperature lapses that were also flagged by the FDA. In Kurla Midday Meal Center, the center scored just 48% in FDA check declared non-compliant. Pest control and cleanliness lapses were flagged. Sankalp Society runs this center. In Lenexis Foodworks in Mahim, FDA flagged grease buildup, water stagnation that was also found at this particular place. At Cafe Cadell in Shivaji Park, there was no segregation between veg and non-veg food, which was flagged as one of the lapses. Inadequate ventilation that was also flagged at this outlet. Well, the Maharashtra Safe Food Drive near schools in particular, that is under the scanner. FDA has inspected food outlets at schools. This is between July 28th and August 21st that a statewide drive has been held. 250 schools were covered in the FDA drive. 15 outlets faced FDA crackdown. School zones are under food safety lens. And cutting across to more breaking news coming in, Yogi government's big Generation Alpha Connect, that is now in the making. Yogi government has cleared 604 crore rupees for UP government schools. 302 crore rupees released as the first installment. 2,243 primary schools to get 344 crore rupees, around 15.36 lakh rupees that has been allocated per primary school. 172.26 crore rupees that has been released for primary schools. 883 upper primary schools to get 259.95 crore rupees. Now around 29.44 lakh rupees per upper primary school that has been allotted. 130 crore rupees that has been released for upper primary schools. Repair and reconstruction work is to begin soon. Let me take this to my colleague Ashish Srivastav now joining us on the broadcast. Ashish, do give us details of how the funds have been allocated and the UP government's effort to connect with Gen Alpha.
2: बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो फंड है वो रिलीज किया गया है जेन अल्फा क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में जिस तरीके से स्कूल्स हैं उनकी मरम्मत होनी है साथ ही साथ उनके जो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन पे कुछ निर्माण होना है उन सभी के लिए करोड़ों रुपए का फंड ये रिलीज किया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ इससे पहले भी कहा है कि जो भी ये फंड है वो उन प्राथमिक विद्यालयों के लिए और हायर जो यानी 6 to 8 के लिए और फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए ये फंड है, जिसमें कि कई ऐसी जगह पर पाया गया है जहां पर अभी देखा गया कई अपोजिशन ने जो वीडियोस हैं वो रिलीज किए हैं और उसने साफ तौर से ये कहा है कि ये देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जो दशा है उसी को सुधारने के लिए एक तरीके से ये पूरी तरीके से पहले का, हालांकि ये फंड ऑलरेडी रिलीज हो जा चुका था और पहली किस्त अब दी जा चुकी है, तो बेसिक निदेशालय ने ये सभी जो फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब वो आगे अलॉकमेंट करने के बाद उसके बाद अब वो अलग अलग जगह पर उसमें निर्माण किया जाएगा, जहां पर टूट फूट है वहां पर रिपेयर किया जाएगा, स्कूलों में जहां पर मरम्मत का काम है वहां पर किया जाएगा। यानी कि जो दावा हमेशा करती आई है योगी आदित्यनाथ सरकार की, कहीं ना कहीं ये सारे स्कूल्स बहुत ही फिट और बेसिक से हैं, उन्हीं को लेकर अब और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जहां पर अगर कोई रास्ता गड़बड़ है तो उसको रास्ता सही किया जाएगा। तो ये अलग अलग मद में ये फंड दिया गया है, जिसमें कि पहला फंड अभी रिलीज किया गया है पहली किस्त, अब दूसरी की जाएगी। अभी लगभग 2 to 2.5 crore बच्चे हैं वो पूरे यूपी में हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं उनमें तकरीबन जो सुविधाएं हैं वो इसके जरिए पूरी तरीके से दी जा सके, और इसीलिए बेसिक का जो बजट है वो भी इसी हिसाब से रिलीज किया गया है कि जिससे कि स्कूलों में और जो प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं वो बन सके। और जैन अल्फा जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के और रूरल क्षेत्र के बच्चे अगर ज्यादा वहां पर आते हैं तो उनको आने जाने में उनके स्कूल टॉयलेट्स में यहाँ तक जो क्लासरूम्स हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं इसके साथ एआई की जो क्लासेस हैं उनके साथ में सभी को रखा जा सके और सभी को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। यही चूंकि पहले में आरोप लगता रहा है कि जो पहले की सरकारें थी वो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इस फंड को नहीं दिया, जो व्यवस्थाएं नहीं थी, जो स्कूलों को नहीं मिल पाई थी, अब योगी आदित्यनाथ की सरकारें वो व्यवस्थाएं कर रही है, उसी को लेकर बजट अलॉट किया गया है, जिसको लेकर सारा कार्य किया जा रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है और अलग अलग जो करोड़ रुपए हैं वो दिए गए हैं।
1: आशीष, हमें और बताइए कि किस तरह से अब जब ये एलोकेशन हो गया है एक्चुअल चेंज दिखेगा ग्राउंड पे, काम कब से शुरू हो गया, क्या टाइमलाइंस डिवाइस की गई हैं?
2: देखिए, जब ये बजट पहली किस्त अलॉट की गई है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब ये नेक्स्ट डे से ही काम शुरू हो जाएगा और जो ग्राउंड पर है वो विद इन मान के चलिए 2 to 3 months में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स मांगी गई थी बेसिक शिक्षा के जो स्कूलों से, तो उन्होंने जिन जिन लोगों ने बताया था कि जिनको जरूरत है उनके हिसाब से उनको ये फंड डाइवर्ट किया जाएगा और उन जिलों में फिर चाहे वो देवरिया का महाराजगंज हो या इसके अलावा जो पूर्वांचल के कई जिलों के जो स्कूल है वहां पर ये फंड डाइवर्ट किया जाएगा। और वहां पर अगर कोई भी ऐसी इस तरीके की जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित भी किया जाएगा, यानी कि बेसिक एजुकेशन में जो भी दिक्कतें हैं वो विद इन 2-3 months में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और आने वाले 6 months में ये पूरी तरीके से वेल फर्निश्ड जो कह सकते हैं कि सारे स्कूल की क्लासेस और जो वहाँ के रास्ते हैं, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बदलेगा। तो यही अभी भी बदला हुआ है लेकिन और इसको इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है।
1: जी आशीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एंड देयर यू सी द बिग जेन अल्फा कनेक्ट बाय द योगी गवर्नमेंट ऑफ द मैसिव फंड दैट हैज बीन एलोकेटेड टू द ट्यून ऑफ 604 करोड़ रुपीस फॉर यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर दैट अपलिफ्ट। And moving on, after sugar prices, onion prices that are now bringing tears to consumers. Onion prices have surged sharply, with retail rates touching nearly 60 rupees a kilo in some markets. The rise has triggered a political attack, with the Congress targeting the centre over the growing cost of essential commodities. The Congress says sugar, milk, cooking oil and fruits are already becoming expensive, and now the humble onion that is adding to the burden in every household. The government, meanwhile, is moving to cool prices. Consumer Affairs Secretary Nidhi Khare has said that onion supplies are being brought in through Kanda Express. Buffer stocks of onions will be released in mandis and retail markets across 5 major consuming centres. The government has also planned to sell buffer onions at a subsidised rate of 35 rupees a kilo in select centres. But the government is also pointing to possible cartelisation and speculation. Khare has said that mandi prices in Nashik are currently higher than that in Delhi, with onion prices reportedly around 45% year on year. The political heat that is also rising. The Congress has a simple question for the government. First sugar, now onions and other essentials that are getting costlier. Is this what you call achhe din?
3: After soaring sugar prices, now it is the onion that is pinching the consumers in the national capital. The good quality of onion, the prices are reaching 60 rupees per kg. And this is not just any retail, random, ready patri wala dukan. This is Safal, a subsidized unit of the government, where even the distribution, the subsidized onion that is coming from the market, is 60 rupees per kg. And even if you go with a loose, a semi-quality, a little of these onions, that is also being sold at the rate of 50 rupees per kg. Within a week, onion from 40, 42 rupees per kg to these markets, to these outlets, have crossed nearly 60 rupees per kg. Anywhere at the Redi Patri store in the society areas, if you travel, they are even selling onion with rupees 65 to 70 rupees per kg. Now, that also varies on the quality of the onion. For example, if you see the loose onion, that is being sold with the prices of 52 rupees per kg, but you'll have to literally struggle to find out and select the quality of onion. But right behind the camera person, if you see a slightly better quality of these onion, that is up to 60 rupees per kg. This is the pinching prices of the onion that we see almost every year. Now, many of shopkeepers say that since the supply line has been affected, there is spike in the prices of the onion, which is very essential ingredients in all our kitchen. In Delhi with Nasir, this is Ashutosh Mishra for India Today. अच्छा ये कितने दिनों से कीमत बढ़ी है प्याज की?
4: पांच दिन शायद पांच एक हफ्ता करीब हो गया सर.
3: One week. कितने बिक रहा था एक हफ्ते पहले?
4: एक हफ्ते पहले तो बिक ही रहा था.
3: लगभग क्या रेट था तब उसमें?
4: तब था 42 रुपए किलो.
3: 40 से 42.
5: सर इतना ही लिया है, अब लगता है थोड़े दिन में ये भी कमी करना पड़ेगा. जिस हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, प्राइस यू आर सीइंग लाइक
3: 60 रुपीज
5: पर केजी. एंड अनियन इज द मेन थिंग, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी किचन.
3: एब्सोल्युटली. चीनी के बाद अभी प्याज की कीमत परेशान कर रही है. अब क्या है, अगर आप सोसाइटियों में रहते हैं तो दिल्ली में, मैं पहाड़गंज आया हूँ तो दुकानों पर ज्यादा के बहुत बड़ी दुकानें अगर नहीं है तो छोटे छोटे गाड़ियां तो लगा दी है, तो प्याज तो दिख रही है. ऐसे जब आप थोक में नहीं आते हैं, इन दुकानों पर आते हैं जहां पर आपको 10, 15, 20, 50 किलो वाली प्याज है जो आप अपने घरों के लिए ले जाते हैं, वो 60 से 65 रुपए किलो है. प्याज की कीमत ऐसी जो दुकानें हैं सोसाइटी में आप जाएंगे दिल्ली मुंबई में, वो 50 रुपए, 55 रुपए और 60 रुपए. अब यहां पर प्याज जो है पहाड़गंज में है 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. मंडी में प्याज अगर 40 से 45 रुपए भी किलो है तो आप समझिए कि ये प्याज मंडी से निकलती है, ट्रांसपोर्ट लगता है, यहां तक पहुंचना है और उसके बाद जो दुकानदार हैं कुछ मुनाफा, उनका मुनाफा जोड़ते ही प्याज की कीमत इतनी पहुंच जा रही है 60 से 65 रुपए. अब सरकारी गाड़ी जब निकलेगी, प्याज आएगी मंडी तक जाएगी, कीमतों पर असर होगा. लेकिन फिलहाल तो ये कि अभी फिलहाल आप 60 से 65 रुपए किलो तक भी प्याज खरीद रहे हैं.
6: महाराष्ट्र में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका असर लोगों की जेबों पर पड़ रहा है. लोग पहले की अपेक्षा कम प्याज खरीद रहे हैं. हमारे साथ ऐसे एक ग्राहक हैं मुंबई में जो होलसेल मार्केट में आए थे. सर प्याज के दाम बढ़े हैं, आपने कितना खरीदा है और पहले कितना लेते थे प्याज?
7: पहले तो मैं 60 में 50 में लेता था प्याज का, अब कांदा भी. अभी तो महंगा होता है, दिन दिन बढ़ के जाता रहता है, कम नहीं होता है बाजार में. अभी भाजी देखो ना कितना, अगले बार में आया तो भाजी का रेट तो बहुत अपना 100 रुपए किलो था, 120 रुपए किलो था.
8: डबल असर पड़ा है. जो हम 25 रुपया 22 रुपए में प्याज खरीदी करते थे, रोज हमारा छोटा रेस्टोरेंट है, प्याज खरीदी करते थे 20-22 में, आज वो 45-48 रुपया 52 रुपया प्याज का भाव हो रहा है.
9: पैसा हमारे से ही ले रहे हैं, उसके जेब में से थोड़ा जा रहे हैं, पैसा तो हमारा ही जा रहा है. उनको कुछ नहीं, उनका दिखावा आता है
8: एडवर्टाइज में,
9: एडवर्टाइज उसमें दिखावा आता है.
7: महाराष्ट्र की लड़की बहन जो, इन्होंने सोचना चाहिए कि पैसा किधर, अपने इधर से लेके जा रहे हैं मुख्यमंत्री के लड़की बहन का और इधर पैसा वसूल कर रहे हैं.
6: लोगों में इसको लेकर काफी रोष है क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोगों का एक बजट होता है घर का वो बहुत हिल गया है क्योंकि सिर्फ प्याज के दाम नहीं बढ़े, शक्कर के दाम बढ़े हैं, अन्य चीजों के भी दाम बढ़े हैं. लेकिन जब पेट्रोल डीजल या इनके दाम कम होते हैं तब इनके दाम कम नहीं होते, जिसका असर जो है लोगों की जेब पर काफी समय तक देखने को मिलता है. और इसीलिए लोग जो हैं अब काफी हद तक नाराज हैं, ताकि और यही अपेक्षा है इनकी कि अब सरकार स्थिति को मैनेज करे ताकि लोगों का जो बजट है घर का वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ सके.
10: अहमदाबाद के पालड़ी में स्थित वेजिटेबल मार्केट में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और लगातार देश भर में जिस प्रकार से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी को लेकर हम फिलहाल इस वेजिटेबल मार्केट में आए हुए हैं. तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको तस्वीरों में प्याज दिखाई भी पड़ रही है और खास करके प्याज की कीमतों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार प्याज की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है. सीधे तौर पर कहे तो प्याज अब आम जनता के आँखों में आंसू ला रहे हैं और बढ़ती प्याज की कीमतों की वजह से न सिर्फ आम जनता लेकिन व्यापारी भी कहीं ना कहीं चिंतित है। जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है?
11: सुनील भाई।
10: सुनील भाई, जिस प्रकार से फिलहाल जो प्याज की कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिलहाल प्याज की कीमत अगर हम जानना चाहें क्या है?
11: प्याज की कीमत तो अभी पूरे वीक से दिन प्रतिदिन होलसेल मंडी में क्विंटल पे 500 रुपए बढ़ रही है। कहने का मतलब वन वीक पहले जो क्विंटल का 3500 रुपए तक था, आज की मंडी में 5000 रुपए क्विंटल तक बाजार पहुंच गया है।
10: गुजरात की अगर बात कर लें, खास करके अहमदाबाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्याज जो है वो यहाँ तक पहुँचता है, और जिस प्रकार से बीते दिनों में लगातार बारिश होती रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी हुई होने की बात भी व्यापारी की तरफ से कही जा रही है, और यही स्थिति आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन तक रहती है। तो व्यापारियों का यही कहना है कि जो प्याज अभी 60 रुपए के आसपास बाजारों में मिल रही है उसकी कीमत 80 से 100 रुपए भी पहुँच सकती है। यानी प्याज की कीमतें जो लगातार बीते एक हफ्ते से जो कि 35 रुपए से 60 रुपए तक पहुँची है, वो आने वाले एक हफ्ते से लेकर 15 दिन में 90 से 100 रुपए तक भी पहुंचने की आशंका व्यापारियों द्वारा जताई जा रही।
1: But that is time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, my colleague Anisha Mathur joins you with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: मार्केट रेट अगर मैं आपको बता दूं लखनऊ का, तो प्याज इस समय यहाँ पर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यही प्याज कुछ वक्त पहले 30-40 रुपए में प्रति किलो मिल रहा था। ये लहसुन आपको 80 रुपए पाव मिल रहा है, जो 50-60 रुपए पर पाव कुछ दिन पहले तक मिल रहा था। अब समझ में ये आता है कि आखिर ये रेट क्यों बढ़े हैं, ये भी समझते हैं। कई वजह बताई जा रही है। देखिए दुकानदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी दुकान पर प्राथमिकता से मैं आलू प्याज और लहसुन देख रहा हूँ। दाम पिछले दिनों से काफी बढ़ गए हैं।
1: जी भैया,
0: कितना बढ़ा है मोटा मोटा?
1: किलो प्याज पे बढ़ गया लगभग 20 रुपए किलो पे। हाँ। लहसुन बढ़ गया है जो।
0: तो मंडी से आप जब जा रहे हैं, मंडी में कितने मिल रहा है आपको?
1: मंडी में आ रहा है 48-50 रुपए का प्याज,
0: और लहसुन
1: आ रहा है 280 रुपए किलो का।
0: कस्टमर क्या कहता है आप लोगों से?
2: कस्टमर
0: बड़ा महंगा दे रहे
2: हो। बड़ा महंगा दे रहे हो, कैसे महंगा हो गया?
0: बार्गेनिंग करता होगा।
2: हाँ, क्यों
0: नहीं? तो आप ही को महंगा मिल रहा, आप कहाँ से कम करोगे?
2: भाई तो चीज है सर, जो महंगा आप लोगों को मिलेगा महंगा बेचना पड़ता।
0: अच्छा, ये 60 रुपए किलो जो आप प्याज दे रहे हो, ये मंडी से कितने मिली आपने?
2: मंडी से आ रही 50 रुपए, 52 रुपए अच्छी प्याज, 52 रुपए है, 51 रुपए है, 50 रुपए।
0: तो भैया ये बताइए कितना ले जा रहे हैं प्याज?
3: प्याज एक एक किलो दो जगह लिए हैं।
0: किलो ये देखिए, ये आधा किलो का है,
3: एक किलो का है,
0: दो किलो ले जा रहे हैं। ये देखिए ये दो किलो ले जा रहे हैं। अच्छा, अगर 30 रुपए मिल रहा होता कितनी पन्नियां बनती फिर?
3: कितनी? अब वही जितनी जरूरत होती है उतना ले जाते हैं, अब चाहे 30 तो या 50 से। एक
0: ऐसा भी घर में होता ना कि सस्ता मिल रहा हो यार, 10 किलो ले लें।
3: जितना बजट रहता है उस हिसाब से ही, उतना जितनी आवश्यकता होती उतना ही लेते हैं।
0: जो शुरुआती बारिश हुई, ये प्रमुख कारण निकल कर सामने आता है कि उस वक्त बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो आप घरों में जो पन्नियां जा रही है, देखिए भर रहे हैं, इनको देखेंगे अगर आप, तो कई घर ऐसे भी हैं जिन्होंने प्याज लेना तो जारी रखा लेकिन कुछ कम कर दिया। सब्जियों में अगर दो प्याज पड़ रहे थे तो आधे एक प्याज है।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: हो सकती है और हार भी।
1: विजय सालगांवकर हैज ऑलवेज हैड अ स्टोरी टू हाइड।
2: पापा पुलिस आई।
1: नाउ इट लुक्स लाइक हिज बिगेस्ट सीक्रेट कुड फाइनली बी कमिंग टू एन एंड।
0: लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है।
1: The makers of Ajay Devgan's third Drishyam film has officially revealed its title. Drishyam, the conclusion.
0: मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है। जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूँ, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: The title has immediately sparked questions about whether the Hindi franchise is finally preparing to close the book on Vijay Salgaonkar's story.
0: जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूँ, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर, क्योंकि कहानी अभी।
1: And now the countdown has begun. Drishyam the Conclusion is scheduled to hit cinemas on October 2nd. With Ajay Devgan returning as Vijay.
3: Police station mein kya hai? Kahi tumne wahi pe to body bhej.
4: Chahe kuch bhi ho jaye, main tum logo ko kuch nahi hone dunga.
1: Meanwhile, several familiar faces from the franchise will also return with Tabu, Shreya Saran, Rajat Kapoor, Prakash Raj, Jaideep Alawat and Ishita Dutt.
0: Wo phir aayenge.
1: At the heart of franchise is Vijay, an ordinary family man who finds himself caught in an extraordinary criminal case.
5: गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया।
3: मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, मगर वो तो अभी तक छानबीन कर रहा है।
0: जब तक हमसे
1: His desperate attempts to protect his family, outsmart the law and stay one step ahead of the authorities have driven the story across the previous films.
5: गेस करोगे
6: केस के बारे में क्या क्या याद है?
7: सब कुछ। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता।
8: सर बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते।
1: इंटरेस्टिंगली द हिंदी दृश्यम फ्रेंचाइज इज इटसेल्फ एन अडैप्टेशन ऑफ द मलयालम फिल्म ऑफ द सेम नेम व्हिच स्टार्ड मोहनलाल इन द लीड। द ओरिजिनल बिकेम अ मेजर सक्सेस एंड वेंट ऑन टू इंस्पायर रीमेक्स इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। हाउएवर The biggest twist may lie in what happens next.
9: Sir, ഇപ്രല്ല നമ്മുടെ പ്രസക്തി. മീഡിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെ ജീവൻ വെച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ട എന്തോരം കേസുകളുണ്ട് സർ.
10: അവരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സൂചന തരാൻ
11: പറ്റുമോ? I want this full fire on my desk as soon as possible.
1: While the Hindi franchise is calling its third chapter The Conclusion, the Malayalam franchise is moving in the opposite direction, with a fourth installment already confirmed. The update came months after Drishyam 3 released on May 21st and went on to become a blockbuster. So while Vijay's Hindi journey may be heading towards its final chapter, the original franchise clearly has more secrets left to uncover. Entertainment Bureau, India Today.
12: The battle between good and evil is getting a powerful new visual treatment with Mahakali unveiling its first glimpse. But what has truly caught attention is Akshay Khanna's striking transformation into Shukrachar. With the fierce, almost unrecognizable look, the actor has instantly become one of the teaser's biggest talking points.
1: Mm-hmm. The battle between good and evil

0: मोहम्मद शोएब
1: जी सर, हमारा बॉटल अंदर करो।
2: हमको नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है, रोज रोज जलील होना है।
3: एक बार हम सिपाही बन गए साला, किसी के बाप ने हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की।
4: सिर्फ हम चाहे जितने विकेट उखाड़, एक सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर की औकात है हमारी, और बस वहीं तक सीमित है, वही हमारी पहचान।
3: तो पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई, पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं।
5: Meanwhile, he has Jugadu, an action comedy in the pipeline.
6: नाम क्या है उसका?
7: अभिराज सिंह।
5: He will also reprise his lead role in the upcoming second season of Netflix, The Royals.
6: क्या तुम्हारे सब कुछ मजाक है? Anything that you value?
8: हम जानते हैं तुम्हारे और उस लड़की के बारे में।
5: Entertainment Bureau, India Today.
8: वो क्या होता है?
9: Oh, Paddy.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: are watching India Today.
1: Now, after sugar prices, onion prices are now bringing tears to consumers. Onion prices have surged sharply, with retail rates touching nearly 60 rupees a kilo in some markets. The rise has triggered a political attack, with the Congress targeting the centre over the growing cost of essential commodities. The Congress says sugar, milk, cooking oil and fruits are already becoming expensive, and now the humble onion is adding to the household burden. The government, meanwhile, is moving to cool prices. Consumer Affairs Secretary Nidhi Khare says onion supplies are being brought in through Kanda Express. Buffer stocks of onions will be released in mandis and retail markets across 5 major consuming centres. The government also plans to sell buffer onions at a subsidised rate of Rs. 35 per kilo in select centres. But the government is also pointing to possible cartelisation and speculation. Khare says mandi prices in Nashik are currently higher than in Delhi. With onion prices reportedly up around 45% year-on-year, the political heat is rising too.
2: After soaring sugar prices, now it is the onion that is pinching the consumers in the national capital. The good quality of onion, the prices are reaching 60 rupees per kg. And this is not just any retail, random, ready patri wala dukan. This is Safal, a subsidized unit of the government, where even the distribution, the subsidized onion that is coming from the market, is 60 rupees per kg. And even if you go with the loose, a semi-quality, a little of these onions, that is also being sold at the rate of 52 rupees per kg. Within a week, onion from 42 rupees per kg to these markets, to these outlets, have crossed nearly 60 rupees per kg. Anywhere at the Ready Patri store in the society areas, if you travel, they are even selling onion with rupees 65 to 70 rupees per kg. Now, that also varies on the quality of the onion. For example, if you see the loose onion, that is being sold with the prices of 52 rupees per kg, but you'll have to literally struggle to find out and select the quality of onion. But right behind the camera person, if you see a slightly better quality of these onion, that is up to 60 rupees per kg. This is the pinching prices of the onion that we see almost every year. Now, many of shopkeepers say that since the supply line has been affected, there is spike in the prices of the onion, which is very essential ingredients in all our kitchen. In Delhi with Nasir, this is Ashutosh Mishra for India Today. Achha, ye kitne dino se kimat badi hai pyaaz ki?
3: पांच दिन शायद पांच एक हफ्ता करीब हो गया सर.
2: वन वीक कितने बिक रहा था
3: एक हफ्ते पहले तो बिक ही रहा था.
2: लगभग क्या रेट था तब उसमें?
3: तब था 42 रुपए किलो.
2: 40 से 42
4: सर, इतना ही लिया है. अब लगता है थोड़े दिन में ये भी कमी करना पड़ेगा. जिस हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, प्राइस यू आर सीइंग लाइक
2: 60 रुपीज
4: पर केजी. एंड अनियन इज द मेन थिंग, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी किचन.
2: एब्सोल्युटली. चीनी के बाद अभी प्याज की कीमत परेशान कर रही है. अब क्या है, अगर आप सोसाइटियों में रहते हैं तो दिल्ली में, मैं पहाड़गंज आया हूँ तो दुकानों पर ज्यादा के बहुत बड़ी दुकानें अगर नहीं है तो छोटे छोटे गाड़ियां तो लगा दी है, तो प्याज तो दिख रही है. ऐसे जब आप थोक में नहीं आते हैं, इन दुकानों पर आते हैं जहां पर आपको 10, 15, 20, 50 किलो वाली प्याज है, जो आप अपने घरों के लिए ले जाते हैं, वो 60 से 65 रुपया किलो है. प्याज की कीमत ऐसी जो दुकानें हैं सोसाइटी में आप जाएंगे दिल्ली मुंबई में, वो 50 रुपए, 55 रुपए और 60 रुपए. अब यहां पर प्याज जो है पहाड़गंज में है 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. मंडी में प्याज अगर 40 से 45 रुपए भी किलो है तो आप समझिए कि ये प्याज मंडी से निकलती है, ट्रांसपोर्ट लगता है, यहां तक पहुंचना है, और उसके बाद जो दुकानदार हैं कुछ मुनाफा, उनका मुनाफा जोड़ते ही प्याज की कीमत इतनी पहुंच जा रही है 60 से 65 रुपए. अब सरकारी गाड़ी जब निकलेगी, प्याज आएगी मंडी तक जाएगी, कीमतों पर असर होगा. लेकिन फिलहाल तो ये कि अभी फिलहाल आप 60 से 65 रुपए किलो तक भी प्याज खरीद रहे हैं. क्या हिसाब है?
5: 65 रुपए किलो भैया.
2: 65 रुपए किलो. हाँ. कब से महंगा हुआ है
5: ये? अभी 5-6 दिन हो गए भैया.
2: 5-6 दिन.
5: हाँ जी, हाँ जी.
2: तो अभी मंडी में क्या रेट मिल रहा है?
5: वहाँ से 60 रुपए किलो मिल रहा है भैया.
2: 60 रुपए में 5 रुपए फायदा लगा के
5: ना? प्याज में तो कुछ मिलता ही नहीं भैया. प्याज 60 रुपए ला के 65-70 बिक रहा है मार्केट में. इससे बढ़िया जो क्वालिटी है वो 70 चल रहा है, उससे थोड़ा हल्का रेट है वो जो 65 चल रहा है.
6: महाराष्ट्र में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका असर लोगों की जेबों पर पड़ रहा है. लोग पहले की अपेक्षा कम प्याज खरीद रहे हैं. हमारे साथ ऐसे एक ग्राहक हैं मुंबई में जो होलसेल मार्केट में आए थे. सर, प्याज के दाम बढ़े हैं, आपने कितना खरीदा है और पहले कितना लेते थे प्याज?
7: पहले तो मैं 60 में 50 में लेता था प्याज का, और कांदा भी. अभी तो महंगा होता है, दिन दिन बढ़ के जाता रहता है, कम नहीं होता है बाजार में. अभी भाजी देखो ना कितना, अगले बार में आया तो भाजी का रेट तो बहुत, अपना 100 रुपए किलो था, 120 रुपए किलो था.
8: डबल असर पड़ा है। जो हम 25 रुपया 22 रुपये में प्याज खरीदी करते थे, रोज हमारा छोटा रेस्टोरेंट है, प्याज खरीदी करते थे 20-22 में, आज वो 45-48 रुपया 52 रुपया प्याज का भाव हो रहा है।
9: पैसा हमारे से ही ले रहे हैं, उसके जेब में से थोड़ा जा रहे हैं, पैसा तो हमारा ही जा रहा है, उनको कुछ नहीं, उनका दिखावा आता है
8: एडवर्टाइज में,
9: एडवर्टाइज उसमें दिखावा आता है।
7: लड़की बहन जो इन्होंने सोचना चाहिए कि पैसा किधर, आपने इधर से लेके जा रहे मुख्यमंत्री के लड़की बहन का और इधर पैसा वसूल कर रहे हैं।
6: लोगों में इसको लेकर काफी रोष है क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोगों का एक बजट होता है घर का वो बहुत हिल गया है क्योंकि सिर्फ प्याज के दाम नहीं बढ़े, शक्कर के दाम बढ़े हैं, अन्य चीजों के भी दाम बढ़े हैं, लेकिन जब पेट्रोल डीजल या इनके दाम कम होते हैं तब इनके दाम कम नहीं होते, जिसका असर जो है लोगों की जेब पर काफी समय तक देखने को मिलता है और इसीलिए लोग जो है अब काफी हद तक नाराज हैं ताकि और यही अपेक्षा है इनकी कि अब सरकार स्थिति को मैनेज करे ताकि लोगों का जो बजट है घर का वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ सके।
10: अहमदाबाद के पालड़ी में स्थित वेजिटेबल मार्केट में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और लगातार देश भर में जिस प्रकार से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं इसी को लेकर हम फिलहाल इस वेजिटेबल मार्केट में आए हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको तस्वीरों में प्याज दिखाई भी पड़ रही है और खास करके प्याज की कीमतों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार प्याज की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। सीधे तौर पे कहे तो प्याज अब आम जनता के आंखों में आंसू ला रहे हैं और बढ़ती प्याज की कीमतों की वजह से न सिर्फ आम जनता लेकिन व्यापारी भी कहीं ना कहीं चिंतित है। जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है?
11: सुनील भाई।
10: सुनील भाई, जिस प्रकार से फिलहाल जो प्याज की कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिलहाल प्याज की कीमत अगर हम जानना चाहें क्या है?
11: प्याज की कीमत तो अभी पूरे वीक से दिन प्रतिदिन होलसेल मंडी में क्विंटल पे 500 रुपये बढ़ रही है। कहने का मतलब वन वीक पहले जो क्विंटल का 3500 रुपये तक था, आज की मंडी में 5000 रुपये क्विंटल तक बाजार पहुंच गया है।
10: गुजरात की अगर बात कर लें, खास करके अहमदाबाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्याज जो है वो यहाँ तक पहुँचता है और जिस प्रकार से बीते दिनों में लगातार बारिश होती रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी हुई होने की बात भी व्यापारी की तरफ से कही जा रही है और यही स्थिति आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन तक रहती है। तो व्यापारियों का यही कहना है कि जो प्याज अभी 60 रुपये के आसपास बाजारों में मिल रही है उसकी कीमत 80 से 100 रुपये भी पहुँच सकती है, यानी प्याज की कीमतें जो लगातार बीते एक हफ्ते से जो कि 35 रुपये से 60 रुपये तक पहुँची है वो आने वाले एक हफ्ते से लेकर 15 दिन में 90 से 100 रुपए तक भी पहुंचने की आशंका व्यापारियों द्वारा जताई जा रही है।
12: चीनी कम है, ये जो गाना है ये कहीं ना कहीं अब एक तरीके से यथार्थ होता जा रहा है। वजह है कि जो चीनी है उसका रेट अब बढ़ता जा रहा है, 68 रुपए के आसपास इसका पहुंच चुका है, 70 रुपए पहुंच चुका है, अलग अलग रेट से दुकानों पर चीनी उपलब्ध है, लेकिन लोगों के चाहे कप हो या उनका जो शौक है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि चीनी लगातार जो रेट बढ़ रहा है उससे लोगों को भी अब कहीं ना कहीं जेब पर उनकी फर्क पड़ता जा रहा है। अब ऐसे में कब तक और कब ये हालात सुधरेंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन चीनी जिस हिसाब से बढ़ी है ऐसे में कभी उम्मीद नहीं थी कि इस रेट तक जा सकती है। अब ऐसे में यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी खुद सरप्राइज हैं। भाई साहब, चीनी का रेट बढ़ रहा है, कितना आप लोग चौंके हैं?
13: अरे बहुत ज्यादा, समय तो चीनी के दाम उस स्तर पे है कि आदमी के घर से चीनी गायब। पहले लोगों को शुगर होती थी इसलिए चीनी छोड़ते थे, अब दाम क्यों से चीनी छोड़ रहे हैं?
12: अच्छा, लोग कहते हैं कि बहुत में
13: भी स्टोर करके रखा जाएगा कि लोग रखेंगे और दिखाएंगे बच्चों को कि चीनी इतनी क्वेटेबल है, लोग खाते थे।
12: ओके, तो जिस तरीके से चीनी गायब हुई है लोगों की थाली से ये जरूर कह सकते हैं एक कप से अब चीनी के दाम कब कम होते हैं लोगों को इंतजार है।
1: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
14: You are watching India Today.
15: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।

0: महाराष्ट्र में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और खास करके ऐसे समय में जब त्योहारों का मौसम है, यानी त्योहारों के समय में लोगों की जेब पर जो बोझ है वो बढ़ने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है प्रवीण जी जो प्याज और आलू के उत्पादक हैं, होलसेल विक्रेता हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, कितने दाम बढ़े हैं, कितना असर हुआ है दामों पर, खास करके प्याज के दामों पर?
1: कल के तारीख में 3 रुपए 4 रुपए के बढ़त हुई है प्याज में,
0: किलो के पीछे।
1: अच्छा। क्योंकि फिर कल छुट्टी है, फिर 2 दिन के बाद फिर छुट्टी है, तो इसके लिए मार्केट में ये टाइट है, भाव टाइट है।
0: पहले कितने दाम थे और अब कितने दाम, और कब से दाम बढ़ना शुरू हुआ?
1: अब लगभग रिटेल अपने होलसेल मार्केट में वासी में 40-44 रुपए के आसपास माल भाव है, और यहाँ होलसेल में 52-50 रुपए बिक रहा है।
0: सो डेफिनेटली नाउ द होलसेलर्स आर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस एंड दे आर लुकिंग फॉर द हेल्प बिकॉज द रेट्स ऑफ द ऑनियन एंड द कमोडिटीज विच हैव इंक्रीज दे विल गोइंग टू बी सेम टिल नवंबर एंड डिसंबर टिल द नेक्स्ट बैच ऑफ द लॉट्स विल केम। सो डेफिनेटली दे आर होपिंग गवर्नमेंट टू स्टेप इनटू दिस एंड दे शुड रिज्यूम दिस प्राइस इश्यू एज सून एज पॉसिबल। विद कैमरा पर्सन मंगेश, दिस इज दीपेश त्रिपाठी फॉर इंडिया टुडे, मुंबई।

0: go missing for 24 hours. This is any parent's nightmare. But what happened eventually when they were rescued, the details that came up. The kids left home willingly on Sunday afternoon after they watched a video about a 24-hour challenge. So in that game, video game that's inspired them to create a hidden base of their own and spend 24 hours there. When the children failed to return, of course, because nobody knew about it, the family started to search nearby areas, contacted the police. Mission Shakti team was launched. Eventually, after about 2 hours of search, the two boys were located safely and very close to their residence. What was game for them clearly caught everyone off guard. Further probe in the matter revealed that because of this online game, participants basically build a concealed base at a secluded location and you have to remain there for 24 hours. And the children took the concept literally. Imagine this can be a huge safety risk as well, and parents will have to be very cautious and supervise what the children are watching.
1: देखिए कल 23 अगस्त को थाना हस्तिनापुर पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई थी जो बड़ी ही परेशान स्थिति में थाने पे आई थी कि उनके जो दो बच्चे हैं एक यूट्यूब पे जो गेम चलता है सीक्रेट होम्स नामक उसको देख के कहीं चले गए हैं और उनको ऐसी आशंका है कि कहीं पर ये लोग हैं छुप गए। इसमें जो एक भट्टा था वहां पे हस्तिनापुर में उसी के पास ये दोनों बच्चे मिले थे और इन्होंने बताया था कि इन लोग की गेम देखने के बाद इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि छुपे रहेंगे ऐसी जगह जहाँ पे इनको कोई भी आदमी जो है कोई भी लोग ढूंढने न पाए।
0: Now, the bit of research that's happening in the cases of online games and in its impact, what are the experts telling us? On India Today, I want to just prepare the list so that as a parent or as a family member, you're kept aware. There is extreme anger being reported among children, minor children, when asked to stop gaming or even stop using their mobile phone or the tech devices that they are given. And some of those signs, for example, that are coming, let's go one by one. Playing for long hours, especially at night, when they should have a clock, which means it's bedtime and then school, it's not being followed. Skipping even studies, homework, even food sometimes, sleep or even basic hygiene because you're so hooked to the online game and what it challenges you and demands of you. Social withdrawal starts to happen. You're in your room. You are constantly watching on the screen with these games sometimes that asks you to stay put. From family and friends, you start to withdraw. What does it start to happen then? In some video games, ladies and gentlemen, you are interacting with strangers globally. You don't even know what kind of people there are on the other side. Therefore, the children start to lie about the gaming time or online spending. That is where some criminal actions also reported when money possibly is needed to update. Mood swings are reported, irritability, aggression, and in some worse scenarios, we've even seen murders happen in these cases. Loss of interest in real-life activities. And these are formative years when your brain is developing, your body is developing, instead being hooked to online games. But let me not send an alarm your way. Here's what you can do, according to what doctors and experts have told us. Set a strict screen time rule and set a certain routine. You cannot do away with the devices. We are in a tech era. Set a certain time and pattern. Encourage sports, outdoor activities, play hobbies like our generation always has done. After school time, just going out in the evening, encourage your kids to play outside. Seek professional help if you realize that the behavior is turning violent. I'll say not even violent. If you see a certain change in behavior, which is on the negative side, which is confusing you, approach help, seek help, talk to people around you, and eventually remember, make a community bond so our children get to grow up in healthy atmosphere. Be cautious, be safe. Images on your screen, one of the most A student gets through IIT Delhi, one of the most prestigious institutions of India, and then a death is reported of that student. Imagine what the parents must be feeling. But they've leveled charges now against the administration of the IIT Delhi. I reiterate that these are claims, these are allegations that have come in from the family side. Speaking to India Today, the student Rishikesh, who died, his brother Abhishek is claiming that the family repeatedly approached IIT Delhi administration for hostel accommodation for Rishikesh, but their requests were unanswered and rejected. He's also alleged that Rishikesh subsequently also started to feel that he was not being assigned an academic project. He had to work on alone on that. There was no support coming in. And now IIT Delhi has constituted an external inquiry committee to investigate into the student's death. But protests have erupted at IIT Delhi premises. Students are raising concern over student welfare, mental health support, institutional accountability. Rishikesh Kumar was an MSc physics student. And to give you details, he jumped from the sixth floor of the lecture hall complex. But police has said that no suicide note was recovered from the spot. So they are examining if there were any counselling records, mobile phone, other materials as part of investigation.
2: क्या है बड़े आरोप सर आईआईटी प्रशासन पर लग रहे हैं कि उनको छात्र कह रहे हैं यहाँ पर कि उत्पीड़न किया गया उनका उनको हॉस्टल नहीं दिया गया गेस्ट हाउस नहीं दिया गया आप उनके भाई हैं तो आपसे क्या बातचीत होती थी सर ऋषिकेश की
3: मैं कल मतलब कल ही तो मुखाग्नि देके आ रहा हूँ भाई का सब चीज नमस्कार यहाँ हो रहा है और मतलब ये था कि इतना हम लोग हाथ जोड़ते रहे प्रशासन से इतना बोलते रहे कॉलेज प्रशासन ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया और कोई डीन है वहाँ पे तालुकदार जी जो वहाँ के डीन है हॉस्टल इंचार्ज है उनको कितना हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर इनको हॉस्टल मतलब दे दो मेरे भाई को हॉस्टल दे दीजिए तो वो बहुत बोला खुद से भी रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे हॉस्टल दे दीजिए लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी कि नहीं ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है हॉस्टल नहीं मिलेगा तुम्हें और फिर उसके बाद वो बोला कि मुझे कम से कम सर हॉस्टल नहीं तो फैमिली क्वार्टर जो है वहाँ पे आईटी के अंदर फैमिली क्वार्टर भी मिलता है ना बीमार बच्चों के लिए तो क्वार्टर भी हमको अलॉट कर दीजिए बोला नहीं क्वार्टर भी नहीं मिलेगा और इस तरह से बोला कि उंगली करके उसको इस तरह से वो बोल रहे थे कि ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है
2: अच्छा प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सर बड़े आरोप लग रहे हैं कि
3: प्रोजेक्ट्स में भी हुआ तो प्रोजेक्ट्स उनको जो दिया गया था तो वो सबको ग्रुप बना के दिया गया था दो दो बच्चे का ग्रुप बना था और इसको चूंकि ये सेकंड सेम भी कंप्लीट नहीं कर पाया था जो मेडिकल रीजन से वजह से वो उसको बैक लेना पड़ा ड्रॉप दिया और उनके कहने पे ही ड्रॉप लिया गया था उसके बाद थर्ड सेम में जब आया तो फिर उसको पहले दिन ही प्रोजेक्ट दे दिया गया रिसर्च में बोला गया कि तुम आप खुद से अकेले से करो तो जो बच्चा सेकंड सेम नहीं पढ़ाया थर्ड सेम में कैसे रिसर्च करेगा तो इसका कहना था कि रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे एक कोई टीम दे दीजिए कोई भी जो लड़का सिंगल कर रहे हैं उनके साथ उनको टैग कर दीजिए तो मेरा भी प्रोजेक्ट हो जाएगा साथ में हम लोग कर लेंगे लेकिन उनको बोला गया नहीं तुम्हें अकेले खुद से करना पड़ेगा
2: अच्छा
3: और वो और डिप्रेस हो गया कि हम खुद से कैसे करेंगे मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आता इतना रो रहा था कि मम्मी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा है और प्रशासन ने कुछ नहीं सुना
4: आज कह रहे हैं वो हम नहीं है वो बस फैलाया जा रहा है
2: ऋषिकेश के साथ क्या प्रॉब्लम्स और दिक्कत आ रही थी कि आत्महत्या उनको करनी पड़ गई क्या आप जानते थे उन्हें पहले क्या बातचीत होती थी आप
4: देखिए बातचीत होती थी मेरी उनसे काफी बात भी हुई है मेरे को काम भी पड़ा उसके साथ वो उसके अंदर एमएससी के अंदर थे सेकंड ईयर के अंदर थे तो उनसे काम करवाया और मेरा जो भी था तो वो काफी हेल्पफुल नेचर के थे उन्होंने मेरी काफी बार हेल्प की और बहुत अच्छे हैं तो वो इतने हेल्पफुल नेचर के व्यक्ति क्या उनको हम कोई हेल्प नहीं दे पाए क्या वो जो इतने ब्राइट माइंड थे उनको हम बचा नहीं पाए बस ये जो आक्रोश है ये जो दिक्कत है इसके ऊपर है
5: A student dying is not business as usual in IITs and this needs to stop. Tomorrow, when all of us return back to LHC to continue the protest, please carry this message to your friends and ask them to join all the students who are protesting there to demand justice, not for just Rishikesh, but all the students who have lost their life in this campus.
0: So while IIT Delhi has set up an external committee to inquire into the incident, the students, the protesters, are not accepting that, calling it all evasive. Let's hope that we'll be able to reach a conclusion in this case. I reiterate ending this bulletin. If you're facing any extreme thoughts, seek out help. Go ahead, find something else to do. Do not take an extreme step. Life is beautiful and things do change for the better. Thank you very much for watching. Stay tuned. Coming up next, news for our special viewers who are hearing impaired. Thank you. Take care.
6: You are watching India Today.
7: करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम
8: ए यू
9: सोच बदलो और बैंक भी

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये सेंटेंस कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं ये समझता हूं कि हिजाब के लिए कुरान करीम में वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है, हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, जरूरी है। लार्ज परसेंटेज यानी मतलब 80-90% जो है औरतें जो है वो हिजाब करती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इसीलिए हिजाब करती हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा है।
1: All the student must follow the all the rules and regulation, but at the same time, if some girls are wearing hijab, it shows their modesty, and it is nothing which is against rule and regulation. So, as far as the court verdict is concerned, I think that the honorable court must review its decision. As I have mentioned, that hijab is an integral part of Islam.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: A leader at the heart of Karnataka's politics. What is his vision for Karnataka? What are the big priorities for the state? And what does the road ahead look like? Catch Karnataka CM D.K. Shivkumar in a candid conversation at the India Today Roundtable Karnataka, 26th August, all through the day, only on India Today.

0: environmental hazard. Our ground report from Srinagar has prompted a wave of reactions on social media, rightly so. Those reactions has prompted again the Kashmir government to take note of, in fact, this massive wasteland that's lying in Srinagar. It's seeping into the lakes, it's polluting the lakes of Srinagar. This is a report filed by Mir Farid for India Today, which has now led to authorities also assuring that they will crack the whip.
1: Behind me, what you're seeing is not an ordinary mountain. This is unique because it's a mountain of garbage, of untreated waste in the heart of Srinagar city. An ecological disaster in many ways, but this is the only dumping site that the Srinagar Municipal Corporation has. And from 1986, if the official records are to be believed, the National Green Tribunal team was here, and they were told by the local government that around 11 lakh metric tons of waste is already here, and that's why you can see these mountains of garbage. And as you come here, 2 kilometer radius is filled with stink. And even if you're blindfolded, you come to this area, you'll come to know that you have reached Achin. And that is really the tragedy of the times, where everywhere in the world you have sewage treatment, you have these civic issues treated in the most scientific manner, and here all that is missing.
2: Srinagar, because it's a paradise, so you can see its other side, people are परेशान.
3: एक डेढ़ साल में आपको अच्छन डंप साइट में विजिबल चेंज मिलेगी, और जो दूर से आपको पहाड़ का गार्बेज मिलता है, वो बदबू मिलती है, वो लीचेट वगैरह मिलता है, वो से आप नजात पाएंगे. दूसरा इज फिर हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का जो चल रहा है वहां पर, दैट इज अ सेपरेट प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर. वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट. तो मुझे लगता है अगले 2 महीने में वी शुड बी ऑन द वर्ज ऑफ इनॉग्रेटिंग दैट प्रोजेक्ट. तो जितना भी शहर का कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है जो अगेन वेस्ट साइट पर डंप हो जाता था, उसको वो खत्म करेगा. थर्ड इज द फ्रेश वेस्ट, फिर कि अब जो नया कचरा आएगा उसका क्या करेंगे. ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, दैट इज द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंड करंटली उसकी जो टेंडरिंग और बाकी स्टेजेस हैं, दैट इज गोइंग ऑन. वंस इट इज अलॉटेड, वो पीपीपी पे हम कर रहे हैं, और वो सीधा 25 साल के लिए रहेगा वहां पे. सो जो भी हमारी फर्म आएगी या जो भी बंदा आएगा, वो वहां पर उसको एस्टैब्लिश करेगा और फिर 25 साल के लिए उसको रन करेगा, और उसकी कैपेसिटी इज मच हायर देन द वेस्ट दैट इज डम्प्ड एट द डंप साइट राइट नाउ.
0: Okay, with that, I'm slipping into a short break here on Super 6. We'll be right back with more news stories and also the big release tomorrow, Yash's starrer, Toxic. We'll get you more on that in just a minute.

0: मार्केट रेट अगर मैं आपको बता दूं लखनऊ का, तो प्याज इस समय यहाँ पर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यही प्याज कुछ वक्त पहले 30-40 रुपए में प्रति किलो मिल रहा था। ये लहसुन आपको 80 रुपए पाव मिल रहा है, जो 50-60 रुपए पर पाव कुछ दिन पहले तक मिल रहा था। अब समझ में ये आता है कि आखिर ये रेट क्यों बढ़े हैं, ये भी समझते हैं। कई वजहें बताई जा रही है। देखिए, दुकानदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी दुकान पर प्राथमिकता से मैं आलू, प्याज और लहसुन देख रहा हूँ। दाम पिछले दिनों से काफी बढ़ गए हैं।
1: जी भैया,
0: कितना बढ़ा है मोटा मोटा?
1: किलो प्याज पे बढ़ गया लगभग 20 रुपए किलो पे। लहसुन बढ़ गया है जो।
0: तो मंडी से आप जब जा रहे हैं, मंडी में कितने मिल रहा है आपको?
1: मंडी में आ रहा है 48-50 रुपए का प्याज।
0: और लहसुन?
1: लहसुन आ रहा 280 रुपए किलो का।
0: कस्टमर क्या कहता है आप लोग से?
2: कस्टमर
0: बड़ा महंगा दे रहे हो।
2: प्याज बड़ा महंगा दे रहे हो, कैसे महंगा हो गया?
0: बार्गेनिंग करता होगा।
2: हाँ, क्यों
0: नहीं? आप ही को महंगा मिल रहा, आप कहाँ से कम करोगे?
2: भाई वही तो चीज है सब, जो महंगा हम लोग को मिलेगा महंगा बेचना
0: पड़ता है। ये 60 रुपए किलो जो आप प्याज दे रहे हो, ये मंडी से कितने मिली आपने?
2: मंडी से आ रही 50 रुपए, 52 रुपए। अच्छी प्याज 52 रुपए है।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये सेंटेंस कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं ये समझता हूं कि हिजाब के लिए कुरान करीम में वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है, हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, जरूरी है। लार्ज परसेंटेज यानी मतलब 80-90% जो है औरतें जो है वो हिजाब करती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो इसीलिए हिजाब करती हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा है।
1: All the student must follow the all the rules and regulation. But at the same time, if some girls are wearing hijab, it shows their modesty, and it is nothing which is against rule and regulation. So as far as the court verdict is concerned, I think that the honorable court must review its decision. As I have mentioned, that hijab is an integral part of Islam.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: आज आपकी फ्लाइट सुखद रही होगी।
1: को प्रेजेंटेड बाय हिंट, एक हिंट तो देते।
2: सूज लॉन, गुड एनर्जीज दैट वर्क।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं, मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी।

0: मोहम्मद शोएब
1: जी सर, हमारा बॉटल अंदर करो।
2: इनको नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है, रोज रोज जलील होना है।
3: एक बार हम सिपाही बन गए, साला किसी के बाप ने हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की।
4: सिर्फ हम चाहे जितने विकेट उखाड़, एक सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर की औकात है हमारी, और बस वही तक सीमित है, वही हमारी पहचान।
3: तो पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई, पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं।
5: Meanwhile, he has Jugadu, an action comedy in the pipeline.
6: Naam kya uska?
7: Abhiraj Singh.
5: He will also reprise his lead role in the upcoming second season of Netflix, The Royals.
6: Kya tumhari sab kuch maza aate hai? Anything that you value?
8: Hum jante hain tumhare aur us ladki ke bare mein.
5: Entertainment Bureau, India Today.
9: Wo kya hota hai?
10: Oh, Paddy.

0: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये सेंटेंस कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं ये समझता हूं कि हिजाब के लिए कुरान करीम में वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है, हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, जरूरी है। लार्ज परसेंटेज यानी मतलब 80-90% जो है औरतें जो है वो हिजाब करती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इसीलिए हिजाब करती हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा है।
1: ऑल द स्टूडेंट मस्ट फॉलो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट एट द सेम टाइम इफ सम गर्ल्स आर वेयरिंग हिजाब इट शोज देयर मॉडेस्टी and it is nothing which is against rule and regulation. So as far as the court verdict is concerned, I think that the honorable court must review its decision. As I have mentioned that hijab is an integral part of Islam.

0: हम लोग तो स्पीकर को पिटीशन दिया था एंटी डिफेक्शन के, तो इसलिए अभिषेक बनर्जी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो लोग जो पार्टी छोड़े हैं सब कानून तोड़ के ही छोड़े हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, वो केवल केंद्रीय सरकार का समर्थन से जी रहे हैं, उसका पार्टी का नाम भी नहीं है, निशान भी नहीं है। तो शुभेंदु अभिषेक बनर्जी सही कदम उठाए हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.